कि आसमान से कोई फरिश्ता क्यों नहीं आता, कोई एंजल आसमान से क्यों नहीं आता, आए वो बताए कि आप रसूल हैं। या कभी उन्होंने कहा कि आसमान से ख़जाने क्यों नहीं आते, आपकी ज़िंदगी तो एक रिच पर्सन वाली ज़िंदगी होनी चाहिए, आपके पास गोल्ड हो, आपके पास ज्वेलरीज हो, आपके पास हुकूमत हो, आपके पास तख्त हो, तो आप तो यतीम अबू तालिब हैं अलैहिस्सलाम, ना आपके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं, ना आपके पास इम्कान हैं, आप नबी कैसे हो सकते। या कभी डिमांड करते थे कि ये पहाड़ जो आपको सामने नज़र आ रहा है माउंटेन, उसको इशारा करें वो गोल्ड का हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो हम आपकी बात को मान लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जवाब दिया है। ज़ाहिर सी बात है, आपने क़ुरान का एक लहजा है, एक टोन है आयतों को बयान करने का। जब भी कुफार ने, मुशरकीन ने हमारे रसूल से सवाल किया या हमारे रसूल को अटैक किया, तो सवाल का जवाब भी अल्लाह ने दिया है और अटैक का जवाब भी अल्लाह ने दिया है कि रसूल हमारा अखलाक का पैकर, व इन्ना का लाला खुलुकिन अज़ीम, आपने कोई जवाब नहीं दिया। उम्मत ने या कुफार ने, मुशरकीन ने आपको अबतर कहा कि आपकी कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी नस्ल बाकी नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हम जवाब देंगे रसूल, इन्ना आतायना कल कौसर, हम तुम्हें कौसर अता करेंगे। अबतर तुम नहीं, अबतर वो हैं जो तुम्हें अबतर कहते हैं, ना उनकी असल नस्ल बाकी रहेगी और ना उनकी सोच और उनकी फिक्र बाकी रहेगी। तो जहाँ भी पैगंबर इस्लाम पर लोगों ने अटैक किया, चाहे ज़बान के ज़रिए से हो, तो वहाँ पर रिस्पांस जो मिला है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। कभी कुफार कुरैश ने कहा आप शायर हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हमारा रसूल शायर नहीं है। कभी कुफार कुरैश ने कहा आप मजनून हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये रसूल हमारा मजनून नहीं है। हर सवाल का जवाब और हर अटैक का जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने खुद दिया है। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार को जवाब दिया है कि रसूल, एक डिमांड कुफार का ये था कि रसूल के पास भी कुछ ऐसे मिरेकल्स हों जो मिरेकल हज़रत मूसा के पास था अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा का मिरेकल क्या था? आपके हाथ में एक स्टिक थी, ऐसा जब वो ज़मीन पर फा मारते फेंकते तो वो सांप में और अजदहे में बदल जाता। आपने वो स्टिक के ज़रिए से आपने मिरेकल्स को दिखाया है। खौब कुफार का डिमांड होता आपके पास हज़रत मूसा वाला मिरेकल क्यों नहीं है, हज़रत ईसा वाला मिरेकल क्यों नहीं है आपके पास, वो मिरेकल भी होना चाहिए। आप भी किसी के बदन पर हाथ रखें तो उसे शफा मिल जाए, आप भी किसी को ज़िंदा करें ठोकर मार कर बेइज़्निल्लाह, तो वो मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आते। वो मिरेकल्स आप दिखाइए, कोई ऐसा आपके हाथ में हो, कोई आपका हाथ इस तरह हो कि आप दूसरों को शफा दे सकें। तो डिमांड पर डिमांड बढ़ते गए, मिरेकल्स का तकाजा बढ़ता गया। एक जवाब जो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयतों में दिया, और इस आयत में भी उसकी तरफ इशारा किया कि रसूल का काम मिरेकल दिखाना नहीं है। आप मेरे साथ हैं जी? रसूल का काम मिरेकल दिखाना नहीं। क्या है रसूल का काम? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रसूल का काम है अल्लाह का मैसेज पहुंचाना है। कभी मिरेकल्स के जरिए, कभी मिरेकल की ज़रूरत नहीं है। रसूल का काम लोगों को इल्म देना है, युअल्लिमुहुमुल किताब। रसूल का काम लोगों को प्यूरिफाई करना है, युज़क्कीहिम। रसूल का काम किताब का पैगाम देना और हिकमत बताना है, विजडम सिखाना है उनको। इसके अलावा रसूल का क्या काम है? अगर रसूल का काम बार बार मिरेकल दिखाना ही है, तो ना तो लोगों के डिमांड्स पूरे होंगे और ना मिरेकल का रबता ख़त्म होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। हर बात पर एक मिरेकल, हर बात पर एक मिरेकल। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा रसूल का काम मिरेकल दिखाना नहीं है, रसूल का काम तबलीग करना है, रसूल का काम पैगाम पहुंचाना है, रसूल का काम लोगों तक अल्लाह का मैसेज और वही और रिवीलेशन तक पहुंचा देना है। और उसके बाद लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग उसको एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें। ये काम रसूल का है। हत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमारे रसूल के लिए कहा है पैगाम पहुंचाने के लिए तुम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते।

अगर नहीं करेंगे वी आर इन लॉस। इमाम फरमाते बाजार है, मार्केट है, कंटिन्यूसली वी आर डीलिंग। कुछ खरीद रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ लेने वाले लेते हैं, कुछ लेने वाले नहीं लेते। कामयाब इंसान वो है जो हर सेकेंड दे और कुछ ले। इसलिए पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं सबसे बड़ा बखील वो है जो चुप बैठे और अल्लाह की तस्बीह ना करे। क्यों? अगर तस्बीह नहीं करेगा तो सवाब नहीं मिलेगा, वक्त ज़ाया हो जाएगा, सब वक्त ज़ाया हो जाएगा। इसलिए कहा गया जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद न पड़े वह जफानी, उसने मुझ पर जुल्म किया है, जफा की है। हर लम्हा तुम्हारे लिए नहीं, मैं नाम ले ही लेता हूँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। थैंक यू वेरी मच। कुछ दें और कुछ लें। आयतुल्लाह जवाद अमली फरमाते हैं सबसे बड़ी जो कीमत उसूल करते हैं अल्लाह की बारगाह में, देना नहीं, हम एज दे उम्र दे के कुछ लेते हैं, सबसे बड़ी कीमत जो उसूल करते हैं अल्लाह की बारगाह में वो शहदा हैं, जो राह खुदा में जहाद करने वाले, स्ट्रगल करने वाले, राह खुदा में जान देने वाले, वो सबसे बड़ी कीमत उसूल करते हैं। क्या कीमत है? अल्लाह जान लेकर उन्हें ज़िंदगी देता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता दुनिया वालों के, मरे और ना मरे। शहीद होता है कौन है? तो मार्टर होता है राह खुदा में, मर जाता, दुनिया वाले दफन कर देते हैं। कुरान कहता वो मर गए लेकिन नहीं मरे, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जी। बल होम अहियाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून, दे आर अलाइव, वो जान दे चुके हैं, हम रिवॉर्ड दे रहे हैं उनको, जिंदगी का रिवॉर्ड दे रहे हैं, लाइफ का रिवॉर्ड दे, सबसे बड़ी चीज वो अल्लाह की बारगाह में देकर बेहतरीन इनाम हासिल करते हैं। हमसे जो कहा गया है कम अज़ कम तुम सेकेंड्स और मिनट्स को, आवर्स को अल्लाह की बारगाह में दो, हर लम्हा सवाब कमाने की सोचो। इसलिए कहा जाता है गीबत हराम है, इसलिए कहा जाता है झूठ हराम है, इसलिए कहा जाता है स्लैंडरिंग हराम है, इसलिए कहा जाता है कि इंसान बेकार में वक्त ज़ाया करना उसके लिए जायज़ नहीं है, इसलिए कि हर लम्हे का इंसान को जवाब देना होगा, हर मिनट का जवाब देना होगा। कितनी खूबसूरत हदीस है, अगर किसी ने कमाया वो शहदा ने कमाया, किसी ने कमाया और रिज़ल्ट अच्छा हासिल किया वो सिद्दीकीन ने रिज़ल्ट अच्छा हासिल किया। इतने बड़ा मकाम अल्लाह ने उनको दे दिया, उनका नाम लेना भी सवाब, उनका नाम सोचना भी सवाब, उनका नाम कागज़ पर लिखना भी सवाब, उनका नाम लिखे हुए कागज़ पर पढ़ना भी सवाब, उनके चेहरे को देखना भी सवाब और उनके फ़ज़ाइल को सुनना भी सवाब है, उनके फ़ज़ाइल को बयान करना भी सवाब है। मद है अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक लबनानी स्कॉलर ने चैलेंज किया है, कोई मुझे ये बता दे कि अली की जिंदगी का कोई लम्हा बेकारी में गुजरा हो। चैलेंज है ये, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का कोई एक सेकेंड बेकारी में गुजरा हो, चैलेंज है। और आपने ज़िंदगी को गुजारा, नहजुल बलागा जैसा तोहफा हमें दिया है, कुरान की तफसीर जैसा तोहफा हमें दिया है, ये मौलाए कायनात की ज़िंदगी हमारे सामने, मधे मौलाए कायनात। और हमारे दसवें इमाम ने को मौका मिला, जब सफ़र कर रहे थे आप नजफ पहुँचे, आप ने मौलाए कायनात के रोज़े के मुकाबिल में खड़े होकर मौलाए कायनात की मदह की है। ज़ियारत गदीरिया दसवें इमाम से मंसूब है, उसमें फ़ज़ाइल मौलाए कायनात बयान किए। इमाम इमाम की फ़ज़ाइल बयान करे, वो वक्त ही गदीर का वक्त होगा, वो मौका ही गदीर का वक्त होगा। या वो मकाम बुलंद है जो दुनिया से हासिल किया है, मेहनतों का नतीजा है। मैं अताए परवरदिगार की बात नहीं कर रहा हूँ, बस लोग कहते हैं अता है परवरदिगार है तो क्या होगा, अल्लाह अता हमको भी अता कर सकता है, अल्लाह नहीं, उनकी मेहनतों का नतीजा इतने बड़े हो गए कि दुनिया के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम हकीकत की तलाश करें, रियलिटी पे गुफ्तगू करें, तो एक मदह में

जिनकी ज़िंदगी भी बाबरकत होती है, फुल ऑफ ब्लेसिंग। इतनी किताबें लिख गए वो, हम सफ़ात काउंट नहीं करते, पेजेस को टर्न करने में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उतनी किताबें वो लिख कर चले गए। कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, हाथ से लिखा है उन्होंने, बड़ी किताबें लिखी। वो कहते ख्वाब में आए अपने बेटे के, बेटे ने पूछा बाबा क्या हाल है आपका, कहा किताबों के सवाल बहुत थे, इट वॉज क्या बोलते हैं उसको, वक्त बहुत ले लिया हिसाब और किताब में, अकाउंटेबिलिटी में रोका गया मुझे। फिर किस चीज़ ने आपको नजात दी, बेटा मैं आ रहा था मार्केट से एप्पल खरीद कर, किसी यतीम बच्चे की निगाह उस फल पर पड़ी तो मैंने निकाल कर विथआउट इंटेंशन, विथआउट नीयत, मुझे देना है नहीं देना, उसकी निगाह पड़ी, मैंने एक एप्पल को निकाला, उस यतीम बच्चे के हवाले किया और मैं भूल गया याद ही नहीं रहा मुझे ये भी एक नेक काम है। पता है बेटा, ये नेक काम सारे नेक कामों के ऊपर लिखा हुआ था, इन द फर्स्ट रो, जब होता है लिस्ट बनती है, फर्स्ट नेक काम क्या, तुमने एक यतीम की हेल्प की थी। कभी अल्लाह के साथ बिजनेस करो, हम कुछ काम करके भूल जाते हैं, अल्लाह उसका रिवार्ड भी देता है। नहीं, मेरे लिए एक जुमला कह दूं, कभी हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, डैमेज वाला होता है। आप मार्केट में जाएं, कोई डैमेज चीज़ आप मार्केट में दें, लोग खरीदेंगे नहीं। अल्लाह कहता है तुम्हारी डैमेज वाली इबादत भी मुझे एक्सेप्टेड है। अल्लाहुम्मा हादिही सलाती सल्लैतुहा ला लिहाजत मिनका इलैया। परवरदिगार, जो मैंने नमाज पढ़ी है ना, ना कयाम कंप्लीट है, ना रुकू कंप्लीट है, ना सजदा कंप्लीट है, हमद में गलतियाँ, जिक्र में गलतियाँ, सजदे में गलतियाँ। अल्लाह तबारक व तआला कहता है ले आओ मुझे वो भी कबूल है, वो ले आओ मुझे वो भी कबूल है, वो मुझे डैमेज वाली इबादत भी कबूल है। अल्लाह से बिजनेस करो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक जुमला और भी कह दूँ, कभी कभार अमल इंसान अंजाम नहीं देता, घर से निकलता है, अमल की तौफीक नहीं मिलती, अल्लाह तबारक व तआला कहता है मुझे तुम्हारी वो कोशिश भी कबूल है। वन लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान कोशिश कर चुका, अल्लाह कहता है मुझे वो भी कबूल है। कभी कोशिश भी नहीं करता, इंटेंशन पाक है, प्योर है, नीयत अच्छी, अल्लाह तबारक व तआला कहता है नीयत अच्छी रखो, मुझे तुम्हारी नीयत भी कबूल है, तुम्हारी नीयत पर भी मैं इनाम दे दूंगा। इतने दरवाजे खुले हों नेकियां कमाने के, अगर ना कमाएं कसूरवार हम हैं, अल्लाह नहीं है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस कलील अमल को कबूल फरमाए और हकीकी माना में हमें दसवें इमाम का पैरोकार बनाए। इस जश्न में आखिरी इमाम को शामिल करने के लिए आखिरी इमाम की सलामती की दुआ सब मिलकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

0: मामूम को जो फॉलो करते हैं उनको क़याम में चुप रहना पड़ता है, लेकिन नमाज मैयत में उनको भी इमाम के साथ ज़िक्र पढ़ने पड़ेंगे, दुआ पढ़नी पड़ेगी और दोहरानी पड़ेगी, विद वट कंडीशन कि वो क्वाइटली होगी और वो आहिस्ता होगा। और तीसरा हुक्म जो ज़रूरी है जानने के लिए कि नमाज मैयत में फिर दूसरे नमाज की कंडीशंस नहीं हैं, जैसे वुदू, गुस्ल या तयम्मुम के बिना बग़ैर भी इंसान नमाज मैयत या जनाजा अदा कर सकता है, लेकिन रिकमेंडेड है इंसान इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। और एज ए मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नमाज में, नमाज मैयत में भी चिल्लाना, शाउट करना, हंसना और इन चीज़ों से मना किया गया, रिफ्रेन होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से एक हुक्म जो नमाज मैयत में है, वो नमाज मैयत को स्टैंडिंग पोजीशन में अंजाम देना होगा। और जो अहम कंडीशन है वो क़ुर्बतन इलल्लाह है, टू सीक प्रॉक्सिमिटी टू अल्लाह तबारक व तआला। जब ये कंडीशंस फुलफ़िल हो जाते हैं तो इमाम के साथ नमाज मैयत को अंजाम, जमात के साथ अंजाम दिया जा सकता है।
1: अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन बैना यदय्यस्साअ।
0: लेकिन जो मैसेजेस नमाज मैयत में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट तकबीर के बाद जो पहला मैसेज है नमाज मैयत में वो डिक्लेरेशन ऑफ फेथ है, यानी हम जो जा चुका है दुनिया से, मरहूम का अकीदा बयान करते हैं कि ये तौहीद को मानने वाला, नबूवत और रिसालत को मानने वाला है। जो पढ़ने वाले हैं वो भी अपने फेथ को रिवाइज करते हैं।
1: अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين।
0: दूसरी तकबीर के बाद हम सल्यूटेशंस भेजते हैं पैगंबर इस्लाम के नाम, आपके अहले बैत के नाम और शहदा के नाम, सच्चे लोगों के नाम, ताकि इन सल्यूटेशन का नतीजा और सवाब डिसीज्ड पर्सन को भी हो और जो भेज रहा है उसे भी हो, और अहले बैत अलैहिस्सलाम का स्टेटस भी दुनिया वालों को पता चले।
1: अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल्मुमिनीन वल्मुमिनात والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير।
0: तीसरी तकबीर में हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात के फॉरगिवनेस और मगफिरत की दुआ करते हैं, मुसलमान और मुस्लिमीन की दुआ करते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ करे, उनको बख्श दे, और इसके ज़रिए से जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो भी सवाब हासिल करते हैं कि मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और उसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला उनको भी माफ़ कर देता है।
1: अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक नज़ला बिका व अंत खैरुम मंज़ूलिन बिह, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिही मिन्ना, اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له, اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين। الله أكبر, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار الفاتحة।
0: और लास्ट तकबीर के बाद हम ये मखसूस दुआ करते हैं जो मैयत है उसके लिए, परवरदिगार तमाम मोमिनीन और मोमिनात को माफ़ कर दे, और इस मैयत को जो हम इशारा करके कहते हैं, चाहे वो मर्द की मैयत हो या लेडी की हो, लड़के की हो या लड़की की हो, इशारा करके कहते हैं परवरदिगार इसको भी माफ़ कर दे, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, जो कुछ पता है वो खैर है, वो नेकी है, हम गवाही देते हैं कि ये बंदा